सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से